0: फैसलों पे मैंने पहले के लिखे तुमने सारी की तुम्हें सो भला पहला
1: हरिगुरु अपने दिन भारी सदवार जिन मानस ने देव देखी है कतना लगी।

ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य गुण अखंड लखन सच्चे सतान सच्चे ससुर सच्चे तेरे सिर सच्चे साला सच्चे तेरे पुत्र सच्चे पातशाह नानक सच्चा सच जो मत जमे सुखज गज महला पहला

एक कर्म छड़ के तू करोड़ा कर्म कर। भुखिया नू रोटी खुआ, जल छका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसिया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।

0: गजपन हर हर गजपन हर हर गजपन
1: छत्रताशोकुल पहला सचकाल कूड़ वत्या कल काल कबेदाल बीव बीच बदले गए।

मूर पंडित जिस मुंगी तो किसने के प्यार धर्म धर्म करेगा वावे मंगी मुगद्वार जिस जावे दुख ना जाने छठ बह कर बार सबको पूरा करोगे कितना बुझा के बस परवाना पीछे पाई गया था नानक तो ले जा पे बस स्वर्ग के नानक।

0: तो भक्त कनी सिदाय तो नानक मुखंतर पाए पुण
1: जित मिली ए कसम खाए जिन जिन आई ए तेरी जत ने हल्या तो मुझे लगे तू पे से बन जा।

0: छुट्टी करी कुछ टूर्नामेंट हो जाए चित्तौड़ को जेवे लगा मन करू उसे जाए सके यार किसे लगा दो अंदेवता पानी देवता संत देवता लू पनीमा पाए कृत ता हो अपार
1: पापी सो तन कटिया तुका पाए तेते दामो तिन बिना मेरा सखा नान के बजानिए तुका पाए
2: पंड जबिए पंड लिमिए पंड मंगल रिया पंडो में दोस्त के पंडो चले रहा पंड मुआ पंड पल के पंड को बना
0: मंदा आखिए जिक मेरा जान
1: पंडो ही

आपके घर का जपाराबाद आपका साथ की फिर आपका इमार इकना गली जंजीर पूरी चढ़े विस्तार आप किराए करे आप हों कैसे हों करीब कार नान करना जिनकी या फिर किसी का निशार अक्षत नाम श्री वाहिगुरु।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आप

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत।

मत भूले। कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथों ताह कैसे। कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहु विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

रो लिया रो रो के मेरे धन गुरु नानक पातशाह ने चरणा रुत हो पातशाह बख्श अदूर कहन लगे मरदाने बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो संत लावे ए बिरद तो हजूर ने अमर दृष्टि तकिया तकिया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िया नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन कोई नाड़े बाणी करे नाड़े सत्संग भी करे करते करोड़िए तेनू निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य जो माया भी कर सच हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों बरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछने वाली गल है चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह अदूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्लां विच नहीं गल्लां दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है प्रभाव करना तो है पातशाह मैं गरीब देनी बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आ है फिर जिना संभाल लेता है वह पाए करोड़िए बख्शिश हो ते भी गुरु की बख्शिश बख्शिश वाला समाजन है बख्शिश तो सदी ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा बख्शिश दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़ी जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा करोड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई पाई कीर्तन का अमृत से तो यह दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगे मरदानिया रवाग चुके शब्द की अखेली पचपन मरदाने ने रवाग चुकया बाबे ने सोने गले शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

ऐ मन लाजुम रसा अवरा पै के मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख किसी मुरुख कोल ना को। ये बंदा मन दी बिरथा मन दी गल लोकां पास कर दे मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नु आख। महाराज वचन कर दिए ने जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत खडास। ये अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नू दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

ताँ किस पै आप सुनाइए कहने कथन नाथ भिजे गोविंद हर भावे अवर ओट में सगली देखी अवर ओट में

अब चुनाव दो एक दिन साथी है क्रास न छो जाओ दाता करता अब तू तुस्ते वे क्रेप साओ तू जनो ये सब सह दिल ऐसी जिंद कवाओ।

0: सगले पौले के असर ले नानक निरपाओ निरंकार सच एक पहला पहला
1: नानक निरपाओ निरंकार और के चिराम रोमान के क्या कर्ण कहानी है के चिबे चार के तेरे चरण से गम पूरे ताल बाजारी बाजार माइकले बाजार गावे राजे रानियां बोले

0: नानक नगर सो पाए हर प्रदेश तेरे केवल हम सब गलाए
1: पौड़ी भक्त तेरे मन पाव दे ता सोन कीर्त गाव दे नानक करमा बाहरे ता चोन लैनी थाम दे एक मूला बुजण अपना अणहुंदा आप बनाए दे हौ ढाडी का ली जात और उत्तम जा सदाए दे तेर मंगा जे तुझे त्याए दे।

पाया, बाहर जात को पीले आया, वृंदावन में रंग किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ, नाम खुदाई लो पाया, नीर वस्त्र कपड़े पहरे

घर उठाया सबको अख पाए होए प्रण छुट्टि बिबर पाइये हो नानक तगन टुटी जे तक हुए जोर महला पीला ना मनिए पातुक जैसलाई ससू दरगह दर पाइये तगना सूत महला पीला तगन इंद्री तगन नारी पलके थुक पवेरी दाड़ी तगन पैरी तगन हथी तगन निर्वा तगन अखी वित गाओ अबे वे वड़ धागे और

बाजत बसंत अर पैर वहेंडोल राग ये 11 रागों का गुलदस्ता 11 राग इकट्ठे आप जी ने शरण किए हैं जो कि गायन विच ये बहुत कठिन हैं तो सत आप संगत की आशीर्वाद सदका ही मेहनत करके यहोजी चीज़ा जो गायन कीतिया जांदिया हैं तो सतसंग जी ये स्वरां का मिलाप है जो सत स्वरां नूं गुरुआ ने गुरु नानक साहब जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे गुरु साहबां ने सत स्वरां दे विच गाया है तो शरंदे दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इन्हां सत स्वरां विच कीर्तन किया सारे गावा पा दा निशा ये सत स्वर तो इन्हां स्वरां नूं गुणी जना ने विद्वान लोगों ने ऋषिया ने मुनिया ने पीरां पैगंबरां ने सारे ने इन्हां सत स्वरां नूं गाया। एक विद्वान ने बहुत ही सुंदर लिखा है ये सत सुरां सानू कित्थों मिलियां हन पंक्षियों की आवाज तो सत सुरां सानू प्राप्त होईयां। सब तो पहला जदों विद्वानां ने साज सुर लभ्या है तो साज सुर कित्थों मिलिया है उन्हां कहे मोर हूं की बाणी को सुधार खर्ज बन दिओ। जद मोर बोलिया जंगल दे विच तो उन्होंने मोर की आवाज नूं साज सुर मन लिया सा बन दिता मोर हूं की बाणी को सुधार खर्ज बन दिओ। चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है जदों चातरक पपिया बोलिया तो रे सुर लग्या तो विद्वाना ने रे बन लिया ये रे बन गई सा रे। चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो अजा मैंने भेड़ है जदों भेड़ बोलदी तो गाल सुर लगता है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो। कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है जदों कूंज करलाउंदी है तो मध्यम सुर लगता है मान सुर लगता है। कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो बिद जदों अंब की डाली ते बैठ के कोयल कूकदी है ते फिर पंचम सुर लगता है कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो बिद। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है दादर मैंने डड्डू जदों डड्डू बोलता है ते दास सुर लगता है। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो गजराज हाथी रंगून मैंने चीख जो जंगल दे च हाथी चीखदा है ते नी सुर लगदी है माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो इतनी निर्वाण जान सातों सुर कही है। विद्वाना ने यह सत सुरां इस तरह कहियां हन तो सतसंग जी यह संगीत जो है इथों दे बच्चे सारे बड़ा कीर्तन करते हैं कीर्तन सीखते हैं तो आप जी का सारे का फर्ज है इत्थे जो कीर्तन की लहर परंपरा चली है बहुत ही आनंद आता है जो बच्चे कीर्तन सीखते हैं क्लासीकल कीर्तन दे मन जोड़ते हैं ये तुहाडा बहुत वड्डा उपराला है माता पिता का जो बच्चों कीर्तन दे नाल जोड़ रहे। आओ सिख संगतां वालों गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत के बारे रहत के बारे हुक्म होया सी कि दो शब्द रहत के बारे अमृत के बारे जरूर लाने हैं।